0: Ben.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

Van. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: This is the number one commercial Asian radio station in the United Kingdom, Sunrise Radio, with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
2: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ। कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208-951-0111।
3: मेरी जिंदगी है
0: Pepe's presents the Asim Ali Tour 2026, brought to you by Carpe Diem Experience and IMP Live. Get ready for three massive nights this September as Asim Azhar hits the stage live across the UK. 18th September, Birmingham at the Forum Digbeth. Get tickets at forumdigbeth.co.uk. 19th September, Bradford at Bradford Live. Get tickets at bradfordlive.co.uk. And 20th September, London at Troxy. Get tickets at troxy.com.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।